ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसलिए तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी दे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry2023@gmail.com ते।

0: कई चंद्रे वक्त से न्यो लगा
1: वाह वाह
0: कई चंद्रे वक्त से न्यो लगा
1: वाह
0: रस दी बात बेरा सा

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन

केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स पेस्ट्रीज मठियाईयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचण वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नू फोन करो।

0: and Cellular Point present AmiWeb live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valley, ready hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: Namaskar, Sasikal, main aapka Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mata Ji Ki Chowki. Fourth September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Herman. Aur main ye batana chahta hoon ki ye sham music aur bhakti se bhari hogi. Hum is din ko Janmashtami celebration kar rahe hain. Aur main aapko ek request karta hoon ki sabne apni family ke saath, doston ke saath, jitne bhi aapke close hai, sabke saath aana hai. So guys, see you on 4th September.
2: जब एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात. एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल. वी ऑल्सो शिप कार्स. वी ऑल्सो डू स्टोरेज. 30 years एक्सपीरियंस. वी सर्व विद अ स्माइल. एच के मूवर्स गिव अस अ कॉल. मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704.
3: हैसल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर.
4: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी. ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी. हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो

Brampton. या फिर तीजे लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton, इंडियन फ्रूटलैंड. ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton. वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900.

आई रियली लव दिस सॉन्ग। पता नहीं इस गीत दे विच, इस म्यूजिक दे विच, गीत दे लफ्ज़ां दे विच, गीत दे लिरिक्स दे विच कैसी हेरा फेरी हो गई है लफ्ज़ां दी। दिल करदा बस सुनी जाइए सुनी जाइए सुनी जाइए।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: 98
3: 80 गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के वतनों दूत तुहाडे लई पेश किया जाएगा। सुखी निजर ते किरण जी तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करनगे। मनप्रीत जी हिंदुस्तान तो खबरां पेश करनगे। 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर ने 905-799-0999 905-799-0999। छतरी छत का रिपोर्ट हाजिर है। 6:26 सूरज आया, 8:16 दे चले जाना। मामा चंद सिंह अगे चल के 2:22 ते आएगा ते रात नूं 11:14 ते चले जाना। अज दा तापमान 28 डिग्री तक जाएगा। मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, हल्की जी बारिश पेगी। कल नूं 27 डिग्री सूरज चमकेगा। फ्राइडे नूं 28 डिग्री सूरज ते बदलवाई रहेगी। सैटरडे नूं 26 डिग्री

0: नागपाल साहब सरल आ गया। नागपाल साहब एक बार फिर तो जी आए नो सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अभी जिम्मे पहला सिमरन होना मैंबर ने उन्होंने गलबात करके हटे से पुछ रहे थे कि किस तरीके दे नाल जिहड़े लोग लाहा लै सकदे आ ते लै रहे एनरोलमेंट हो रही है ते मेन वड्डी गल ए आ कि उहदे विच तुसी इत्थे बैठे हो तुसी ट्रक चलाउंदे हो अमेरिका जांदे हो इंडिया भी गए हुए हो तां भी ये लोन तुसी लै सकदे हो। क्लासेस तां ऑनलाइन लाउणियां ने तुसी ऑनलाइन क्लासेस लाओ ते पेपर भी है नहीं कहते फाइनल बाद तुसी सिर्फ असाइनमेंटा देनियां ने।
1: बिल्कुल जी एंड एक तीर दो निशान में आप स्किल भी डेवलप कर रहे हैं लोन भी 50,000 से लेके 1,70,000 का आप लोग हासिल करते हैं। पीछे ना रहो आपके आस पड़ोस वाले सब अप्लाई कर चुके हैं उनके खाते में लोन आ चुके हैं कहीं भी आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चाहे ग्रोसरी करें चाहे बैक होम भेजें चाहे इन्वेस्ट करें देयर इज नो कैच इन इट। बैंक आपको लोन देता है यहाँ पे आपको स्किल फ्री में मिल रही है गवर्नमेंट से डायरेक्ट।
0: ये चीज़ का फायदा यह आ कि तुसी ये नहीं है कि पहला तुहाडे कोल आउणे आ फिर तुसी देणे इन्हां नूं ते ये जिन्हें अप्लाई किया उहदा अकाउंट अटैच होगा उहनूं सीधे डायरैक्ट गवर्नमेंट के खाते दे विचों उहदे खाते दे विच जाणा तुहाडा लैणा देणा विचों उहदे है नहीं गा तुहानूं फीस तां बंदे ने अपने कोलों बाद च पे करनी है इदां ही आ।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल साफ काम साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं और कागज भी असली लगते हैं इसमें कोई नकली कागज भी नहीं बनता और नकली कागज नहीं लगता तो कोई फीस भी नहीं है फीस मतलब कमीशन झोल वाला काम है नहीं साफ काम है हम कोई और काम करते ही नहीं जिसमें झोल होता है जिसमें कागज हिलते हैं साफ काम साफ तरीके से ले फंडिंग 50,000 से 1,70,000 की हासिल करें कोई इसमें क्या कहते हैं एज लिमिट नहीं है और आप आसान से पूरी ऑनलाइन कोर्सेज है एग्जाम्स नहीं है इजी असाइनमेंट्स है फंडिंग आपके खाते में आती है। हमारी फीस कितनी है जी $200 कब काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है।
0: अच्छा तुसी 7-8 साल तो इस फील्ड दे विच हो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनरोलमेंट होके एक एक बार दो दो बार जिहड़े ये लै भी चुके आ सर्टिफिकेशन भी उन्होंने को आ गई आ ऑनलाइन क्लासेज चल भी रही ने अलग अलग बैच भी चल रहे हैं तो असाइनमेंट सिर्फ देनी है तो तुसी दस रहे थे कि जे पेंशन भी बंदा लेंदा वो भी एलिजिबल हैगा।
1: बिल्कुल जी चार्टर ऑफ राइट्स है इस देश में कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई एज लिमिट नहीं है आप चाहे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं आप चाहे पार्ट टाइम जॉब करते हैं अनएम्प्लॉयड है हाउसवाइफ है स्किल हासिल करें फंडिंग अपने अकाउंट में डायरेक्ट हासिल करें आसान से सोखे जो कोर्सेज में हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है। आज आपको डबल लोन आ रहा है 1,70,000 का फैमिली ऑफ 4-5 को लोन आता है। बच्चे अगर छोटे हैं तो कॉलेज की फीस गवर्नमेंट वैसे ही कवर कर देती है 1.5 लाख आया आपने 1.5 लाख ही वापस करना है 0% ब्याज है 2.5 साल बाद रीपेमेंट स्टार्ट है 2.5 साल बाद भी $1,00,000 पे ब्याज पूरे साल का सिर्फ $2,500 है बताओ $1,00,000 का ब्याज साल का $2,500 सिर्फ।
0: मैंने बंदा मिलया कहना भाई जी वो जो कहना मैं 15-20 साल की गल कहना मैं ना जो आया मैं एडवरटाइजमेंट इतनी सुनी तो कहता वो कहना भी लोन तुम्हें बड़ी छेती लोन मिल जाना कहना मैं उन्होंने कॉल की चलो पैसों की जरूरत से भाई दे दो वह कहते थोड़े को घर है कहना मैं भाई तुम आ गल उ एयर से दस दें मैं तुम कॉल ही नहीं करनी घर मेरे को कितने मैं ता ही तो लोन लेना जो घर लैन लिया तो ये तो बिल्कुल ऑन एयर क्लीयर दस रहे हो भी कोई घर है नहीं है डजेंट मैटर तुम्हें घर होना कोई जरूरी नहीं तुम चाहे बेसमेंट भी रह रहे हो तो भी लोन लै सकते हो कोई कार होना कोई जरूरी नहीं कार तुहाडे कोल हैगी है नहीं हैगी तो भी कोई गल नहीं तुम चाहे कल पीआर हो तो भी तुम पीआर कार्ड तुहाडे कोल हैगा तुम पीआर है एटलीस्ट तो तुम ये लोन लै सकते हो ताकि इतने ग्रो कर सको ये कोई होर हिडन चीज तो नहीं हैगी जी बंदा बाद कॉल करे पुछण भी अच्छा आ है फिर मिलना जी।
1: बिल्कुल जी इसमें कुछ भी हिडन नहीं है क्योंकि क्रेडिट चेक नहीं है इसलिए ये नहीं कहते आपका क्रेडिट इतना होना चाहिए क्योंकि क्रेडिट स्कोर 0 भी तो भी आप एलिजिबल है गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है बैंक नहीं दे रहा और पेमेंट भी 2.5 साल बाद स्टार्ट है 15 साल में आप उसे पे करते हैं शुरू में ब्याज 0% है पैसे को कहीं भी लगा सकते हैं मतलब 4-5 ऐसी कुंडी है इसमें जो आप मतलब कहीं नहीं मिलेगी 0% पे लोन कहीं भी खर्च सकते हैं 2.5 साल बाद पेमेंट स्टार्ट है बताइए
0: एलिजिबल हो सकते हो 437-264-3175 437-264-3175 ते तुसी कॉल कर लो तुहानू दस देणगे कि तुसी किन्ने लोन लई एलिजिबल हो सकते हो 30 दिन तो 90 दिनों के मोस्टली लोन तुहाडे अकाउंट के आऊगा तो तुसी इन्हां नू बाद च लमसम सिर्फ $200 पे करना वह भी जदों पैसे तुहाडे अकाउंट के आ गए वो पैसे तुसी जिथे मर्जी वरते हो तो ऑनलाइन क्लास ने जिहड़ी वो तुसी घरों बैठे बिठाए ला सकते हो 437-264-3175 बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच।

0: live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valio, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: दोस्तों देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो एम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नू सुनण वास्ते जां देश परदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जी वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने आईपीटीवी बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नू कलेक्ट करो उत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7।

0: बिल्लो चल होना चल होना व्याह करवाए नी बिल्लो चल होना।
1: गाना थोड़ा क्या सी तुम आहा लाना सी दूजा ए चलूगा कि नहीं नहीं चलिया नहीं भी सॉरी चलो कोई गल नहीं फिर भी दोबारा ला के देखते
0: हैं। आम
1: सॉरी भरा यह जिहड़ा गीत मैं लाउन लग्या सी वो सिस्टम ने लाया नहीं कोशिश करते हैं कि आप बदल के सिस्टम नू तुहाडे मूहरे रखण दा यतन करते हैं जो सारा ही सिस्टम जिहड़ा ना वह हाथ नहीं लग रहा तो क्योंकि जो एक चीज़ थोड़ी जी भी हो जाए ना हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हूँ देख रहे जो लग गया था